0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 25 मई 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही समय हो चला है खबरों की ओर रुख करने का. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे. आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और पुयुवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में हमें सुन रहे सभी श्रोताओं का SBS हिंदी के कार्यक्रम पर स्वागत है. मैं हूं भव्या पांडे. आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो शो जहां हर दिन होती है खबरों की गहराई से बात, दिलचस्प चर्चाएं और संगीत का शानदार साथ. अगले एक घंटे में हम लेकर आएंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत से जुड़ी बड़ी खबरें, साथ ही कुछ अहम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे. आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के नए फेडरल बजट की. ट्रेजर जिम चार्मर्स ने अपने 5वें बजट में निवेश संपत्तियों और कुछ ट्रस्ट फंड्स पर टैक्स बढ़ाने के साथ साथ कामकाजी लोगों के लिए $250 की टैक्स राहत का ऐलान किया है. लेकिन क्या इससे महंगाई और बढ़ते खर्चों से हमें राहत मिलेगी, इसी पर आज चर्चा करेंगे. हर साल दुनिया भर में लाखों मुस्लिम श्रद्धालु हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी संख्या में लोग इस बार ये सफर तय करेंगे और इसी पर एक खास रिपोर्ट हम आज आप तक लेकर आएंगे. इसके अलावा दुख और मुश्किल वक्त अक्सर लोगों को करीब ले आता है, लेकिन सोशल मीडिया इस जुड़ाव को मजबूत करता है या लोगों के बीच दूरियां बढ़ाता है. SBS एग्जामिन्स के एक खास अंश में इसी बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे. इसके अलावा आपको बता दूं कि आज के शो से संबंधित यदि कोई भी सुझाव या संदेश हो तो आप मुझे 04397997667 पर भेज सकते हैं और बताते चले मुझे कि आज के कार्यक्रम में आप मेरे यानी भव्या पांडे के साथ जुड़े हुए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, आपका अपना मन पसंदीदा शो जहां है बड़ी खबरें, दिल से जुड़ी बातें और नॉन स्टॉप न्यूज फ्लैश.

प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां तथाकथित टील इंडिपेंडेंट

0: टेनेंट्स के एक समूह के नई राजनीतिक पार्टी बनाने पर बातचीत चल रही है। ये चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी के समर्थन में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। इंडिपेंडेंट एमपी जैली स्टैगल ने एबीसी रेडियो से कहा है कि कुछ निर्दलीय सांसद ये विचार कर रहे हैं कि संसद में और अधिक प्रभावी तरीके से काम कैसे किया जाए और मतदाताओं को प्रमुख दलों का विकल्प कैसे दिया जाए। हालांकि हेलन हैनीस और मोनिक रायन ने किसी भी संभावित नई पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है और वे अपने स्वतंत्र रुख पर कायम रहने की बात कर रहे हैं। वहीं ऑपोजिशन लीडर एंगस टेलर ने कहा है कि उन्हें ऐसी किसी भी संभावित टील इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने की खबर से आश्चर्य नहीं है। ये चर्चाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब रेड ब्रिज ग्रुप और एक्सेंट रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार वन नेशन अगले फेडरल चुनाव में 59 तक निचली सदन की सीटें जीत सकती है, जिससे वे प्रभावी रूप से फेडरल विपक्ष बन सकती है। वहीं गाजा के लिए सहायता सामग्री ले जाने की कोशिश के दौरान इसराइल द्वारा हिरासत में लिए गए 11 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों में से 7 लोग सिडनी लौट आए हैं, जहां उनका भावनात्मक स्वागत किया गया। कार्यकर्ता नेवे ओकॉनर ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बेहद खराब व्यवहार किया गया, जिसमें मारपीट, टेजर का इस्तेमाल, भोजन और पानी से वंचित रखना और कम सुविधाओं वाले जहाजों में हिरासत शामिल है। एंटीसेमिटिज्म और सोशल कोहिजन पर बनी रॉयल कमीशन आज उस सुरक्षा माहौल की जांच कर रही है जो पिछले साल दिसंबर में हुए बोंडाई हमले से पहले मौजूद था। आयोग पहले से ही समुदाय में बढ़ते यहूदी विरोधी मामलों पर गवाहियां सुन चुका है। वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप और गंभीर हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा 2 ट्रीटमेंट सेंटर जला दिए जाने की खबर है, जबकि अंतिम संस्कार अब सशस्त्र सुरक्षा में किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये प्रकोप देश के लिए बहुत उच्च जोखिम पैदा कर रहा है, हालांकि इसके वैश्विक स्तर पर फैलने का खतरा कम है। आपको बता दूं कि अभी तक इस वायरस से 204 लोगों की मौत हो चुकी है और 868 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में फेडरल सरकार ने महिलाओं के लिए पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज से जुड़ी जानकारी को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इसके तहत एक नई वेबसाइट और टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया और प्रिंट में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विमेंस मिनिस्टर कैली गैलेगर ने कहा है कि मेनोपॉज को लेकर चुप्पी और कलंक के कारण कई महिलाएं पर्याप्त जानकारी और सहायता से वंचित रह जाती हैं। साथ ही एक संसदीय जांच में पाया गया है कि कई महिलाएं इस जीवन चरण में लक्षणों और उपचार विकल्पों की स्पष्ट जानकारी के बिना प्रवेश करती हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में रेलवे लाइन के पास हुए बम धमाके में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक लोग घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट के बाद कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बात करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में 1959 में मृत एक एबोरिजिनल स्टॉकमैन के अवशेषों को अब उनके मूल देश में अंतिम संस्कार के लिए लौटाया जा रहा है। आपको बता दूं कि परिवार और बुजुर्गों की पहचान के बाद अब उन्हें विजरा नेशनल पार्क के पास दोबारा दफनाया जाएगा, जहां उन्होंने कभी काम किया था। बात करें भारत की, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से सामने आ रही है। यहां एक दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ के अम्बेल नाली घाट के पास एक स्कॉर्पियो गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौत हो गई है और प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक महाबलेश्वर और पोलादपुर के बीच स्थित अम्बेल नाली घाट में ये हादसा हुआ है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। दोस्तों, हज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है, जिसमें हर साल दुनिया भर से लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी संख्या में लोग इस सफर पर निकलते हैं। इनमें साउथ एशियन यानी दक्षिण एशियाई समुदाय के भी कई परिवार शामिल होते हैं। इस साल हज के ट्रैवल पैकेज की लागत क्या रही, किन चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ा है और जिन लोगों को इस बार मौका नहीं मिल पाया, वो अगले साल के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में, जो कि आप तक लेकर आ रहे हैं नबील हसन।
1: हज एक सालाना तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेज है जिसे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार करने की ख्वाहिश रखते हैं। करीब 14 सदियों से चले आ रहे इस सफर के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग सऊदी अरेबिया के मक्का शहर पहुंचते हैं और ऑस्ट्रेलिया से भी हजारों लोग इसका हिस्सा बनते हैं, जिनमें साउथ एशियन कम्युनिटी के भी काफी लोग होते हैं। हज के लिए साल 1987 से एक कोटा सिस्टम भी शुरू हुआ, जिसके तहत हर देश को उसकी आबादी का लगभग 0.1% कोटा दिया जाता है। सऊदी अरेबिया ने हज को आसान और बेहतर बनाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काफी निवेश किया है। इस साल दुनिया भर से करीब 15 लाख यानी 1.5 मिलियन लोगों के हज में शामिल होने का अनुमान है। इस बीच मक्का में तापमान लगभग 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और ये एक बड़ी चिंता बनी हुई है, खास तौर पर 2024 के हज के दौरान 1300 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। आज हमारे साथ हैं वखास जमाल, जो ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हैं और जिनके जरिए हर साल कई लोग हज के सफर पर रवाना होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस साल हज के ट्रैवल पैकेजेस की डिमांड कैसी रही, लोगों को क्या चैलेंजेस आए और क्या खास ट्रेंड्स देखने को मिले। वखास साहब, आपका SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत शुक्रिया नबील भाई। सबसे पहले तो मैं हज से स्टार्ट करूंगा कि देखें, हज जिस तरह इस्लाम के 5 अरकान में से एक अरकान है, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में ये जितना जल्दी कर सके वो करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह क्योंकि ये बकरा ईद से या उस पे बड़ी ईद से एक मामला जुड़ा है, तो डेफिनेटली जो लोग नहीं भी जा रहे होते उनकी भी बहुत ज्यादा अकीदत होती है।
1: जी अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में काफी बड़ी साउथ एशियन कम्युनिटी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह से लोग हैं। इस साल हज पर जाने का डिमांड कैसा रहा और क्या पिछले सालों के मुकाबले कुछ नंबर्स बढ़े हैं?
2: हज की डिमांड डेफिनेटली हर साल थोड़ी इंक्रीज कर रही है कम्पेयर टू पिछले सालों के, लेकिन जो कोटा है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज नहीं कर रहा उस तरह। और उसके एक रीजन ये भी है कि डेफिनेटली जिस तरह लोगों में अवेयरनेस आती है, सोशल मीडिया का दौर है और उसमें स्पेशली यंगर जनरेशन में हमें रुझान ज्यादा नजर आ रहा है जो कि लोग हज पे जाना चाहते हैं। लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि वो करें, लेकिन जितने लोग जाना चाहते हैं उतने लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्योंकि सिस्टम इस तरह का डिजाइन है। ओवरऑल
1: पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में काफी टेंशन देखने को मिली है, क्या इस ग्लोबल सिचुएशन का ऑस्ट्रेलिया से जाने वाले यात्रियों के ट्रैवल प्लान्स पर भी कोई असर पड़ा है?
2: डेफिनेटली उसका 100% हुआ है, क्योंकि उसको मैं दो तरह से आंसर करूंगा। एक तो ये कि जो लोग उम्रे वगैरह पे जाते हैं जो कि हज पे नहीं जा सकते क्योंकि हज की जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होती है, उसके सेविंग्स वगैरह आपको मतलब 2-3 गुना ज्यादा करनी पड़ती है कंपेयर टू उम्रे के, और उसमें फिर कोटा वगैरह लिमिटेड होते हैं, तो वो लोग अक्सर फिर उम्रे पे जाना प्रेफर करते हैं कि वो साल में किसी भी टाइम पे चले जाते हैं क्योंकि किसी को छुट्टी नहीं मिल रही, कोई और मसला हो गया। तो वो उम्रे का डेफिनेटली ट्रेंड सारी मिडिल ईस्ट सिचुएशन के बाद काफी उसमें डाउन टर्न आया, क्योंकि जो लोगों ने प्लान बनाए हुए थे लोगों ने कैंसिल कर दिए, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो वो नहीं जा सके। ठीक है, इसी तरह जो हज का था लोगों ने डेफिनेटली अपने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, लेकिन उस सब अरेंजमेंट्स का मसला खराब इस तरह हो गया कि जो फ्लाइट ट्रैवल कर रही थी कतर के थ्रू, दुबई के थ्रू, डिफरेंट कंट्रीज जो मिडिल ईस्टर्न में इम्पैक्टेड है, वहां से वो सब लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई और फिर उन लोगों को वो फ्लाइट्स रीबुक करनी पड़ी, जहां से वो फ्लाइट्स उनको एक्सपेंसिव पड़ी, कुछ केसेस में इवन के 50% उनको मोर एक्सपेंसिव पड़ी कंपेयर टू जो उन्होंने पहले बुक की थी एडवांस में। तो डेफिनेटली उसमें काफी इम्पैक्ट आया है और कई लोगों ने उस पे जो ट्रैवल करना था उनकी जो टोटल कॉस्ट थी वो ऑलरेडी अपनी सेविंग स्पेंड कर चुके थे, लेकिन इस सबकी वजह से उनको वो और ज्यादा पैसे अरेंज करने पड़े क्योंकि ऑलरेडी पैकेजेस बुक हो चुके थे लेकिन अब फ्लाइट्स उनकी रिस्केड्यूल होनी पड़ी, तो उस पे काफी डेफिनेट इम्पैक्ट आया।
1: अगर आप ये बता पाएं कि इस साल हज पैकेजेस का एवरेज कॉस्ट क्या रहा, और हम देखते हैं कि कई लोग अपनी होम कंट्री से भी पैकेज लेकर हज पर जाना प्रेफर करते हैं, तो पैकेजेस की कॉस्ट में अंदाजन कितना डिफरेंस होता है?
2: ऑस्ट्रेलिया से जो मिनिमम पैकेज है बेसिकली वो अराउंड स्टार्ट होते हैं $11,000-$12,000 पर पर्सन। ठीक है, और ये पैकेजेस वो हैं जो 10 से 12 दिन के पैकेजेस, और उस पे अगर आप कंसिडर करेंगे जो हाई एंड पैकेजेस हैं तो वो तकरीबन जाते हैं $35,000-$40,000 पर पर्सन का। लेकिन ज्यादातर हमारे जो ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स हैं साउथ एशियन कम्युनिटी के या दूसरे, वो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं शॉर्ट हज जो कि 10-12 दिन का मिनिमम पैकेज बन जाता है, तो उसमें उनको कह लें कि आप ऑन एवरेज पीपल मोस्टली पे लाइक $14,000-$15,000 ऑन एवरेज। ठीक है,

0: लेकिन अगर यही हज आप इंडिया पाकिस्तान से बांग्लादेश से करें तो उसमें जो अगर आप गवर्नमेंट कोटा पे वहां से जाएं तो डेफिनेटली क्योंकि वो सब्सिडाइज होता है वहां, आपको उसकी कॉस्ट जो है वो अराउंड 5 to 6,000 डॉलर्स या उससे भी कम की मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंट्री में हैं और उनकी क्या कंडीशन है। लेकिन इवन कि अगर आप प्राइवेट ऑपरेटर्स पे वहां से जाते हैं तो स्टिल यू गेट टू सेव लाइक 30-40% इजिली, क्योंकि वहाँ का जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो थोड़े और कस्टमाइज्ड हैं, और फ्लाइट्स भी वहाँ से बाज़ वक़्त आपको चीपर मिल जाती हैं।
1: इंडियन ओरिजिन फैमिलीज जो होती हैं, जिनकी फैमिलीज अक्सर इंडिया में होती हैं, मतलब एक तरह से होम कंट्री में उनके भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त सब होते हैं, उनके लिए क्या इमोशनल एस्पेक्ट भी एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है? और क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि कुछ लोग होम कंट्री से हज पर जाना प्रेफर करते हैं?
0: बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। उस पर देखिए, एक तो मेन रीजन ये है कि जो है हज की रिक्वायरमेंट, उसमें ये है कि उसमें 12 साल से जो कम के बच्चे हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, जिसकी वजह से होता ही है कि स्पेशली कोई भी अगर फैमिलीज हैं जिनके बच्चे हैं तो वो बच्चों को अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अकेला नहीं छोड़ सकते, तो वो उनको कोशिश यही होती है कि वो अपने इंडिया पाकिस्तान अपने कंट्री में चले जाएं, वहां से वो कर लें, उनको वहां ड्रॉप करके फिर वो आगे चले जाएं, ठीक है। और दूसरा फिर ये भी होता है कि जब आप यहाँ से इतनी दूर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप मतलब इतना पैसा लगा के, तो फिर कोशिश ये भी होती है कि आप अपने होम कंट्री का भी विजिट कर लें ताकि आप वहाँ पे अपनी फैमिलीज को साथ मिल लें। लेकिन डेफिनेटली वो एक कहेंगे जो हज का सफर है वो आपका एक इमोशनल, एक स्पिरिचुअल, एक आपका फिजिकल चैलेंज है जिसमें आप हर तरह से टेस्ट होते हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया में लोगों का स्टेटस बड़ा अलग होता है, कोई पीआर पर है, कोई सिटीजन बन चुका है, और लोग अलग अलग नेशनैलिटीज से भी होते हैं। क्या इससे हज प्लानिंग में कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं?
0: सबसे ज्यादा जो हमें ट्रबल होती है खुद भी अरेंज करते हुए वो होती है मिक्स नेशनैलिटीज की, जहाँ पे कपल्स मिक्स नेशनैलिटीज हैं उसमें कोई ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है तो कोई इंडियन पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, तो अगर तो उनके पास परमानेंट रेजिडेंट वीजा है तो डेफिनेटली वो कंपैरेटिवली इजी होता है। लेकिन जहाँ पे अगर वो मिक्स नेशनैलिटीज हैं कि एक इंडिया से है, एक पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, तो वहां पे उनके लिए सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि उनको ऐसा एजेंट ढूंढना पड़ता है जो कि उनको अकोमोडेट कर सके एटलीस्ट होटल्स के केसेस में दूसरी नेशनैलिटी के लिए, क्योंकि जो वीजा है डेफिनेटली वो आपके सिर्फ जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं वो कर सकते हैं और वो अपने कंट्री का कर सकते हैं, वो दूसरे कंट्री से नहीं कर सकते। रिसेंटली एक एग्जांपल थी, वो ये थी कि जो वाइफ थी बेसिकली वो इंडियन नेशनल थी जो कि कतर में रह रही थी, और उनका जो हस्बैंड था बेसिकली वो इधर ऑस्ट्रेलिया में था ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे। अब उनको जब वो आई तो उनका यही मसला था कि अभी हमने इकट्ठे जाके हमने इकट्ठे रहना है, तो उनका फिर क्योंकि वीजा ऑस्ट्रेलिया का एक्सपायर था तो उनको फिर पहले यही गाइड किया कि आप अपना वीजा करें उसको ताकि आप फिर नुस्ख के थ्रू अप्लाई कर सकें। तो डेफिनेटली लोगों को काफी चैलेंजेस पेश आते हैं, मतलब स्टार्टिंग में पूरे प्लानिंग से लेके इवन के उसके एग्जीक्यूशन तक।
2: SBS हिंदी के लिए ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
3: तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आए नबील हसन, और यदि आप इस बार हज पे गए हो या किसी को आप जानते हो जिन्होंने ये यात्रा की है तो हमें जरूर बताएं। नंबर है 04397997। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि लौट कर हम जानेंगे कि भारत में क्या कुछ चल रहा है।
4: Knock, knock, Capital One Bank guy.
5: Wow, Charles Barkley?
4: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
5: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
4: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
5: Anything for a neighbor.
4: Can I try the catchphrase?
5: Sure, take it for a spin.
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
5: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
8: Work in Progress is a podcast.

0: us to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो आपको बता दूं कि वक्त हो रहा है 5:19, और वैसे तो आप मेरे सभी कार्यक्रमों में मेरे साथ रहते हैं, लेकिन यदि आप आज के शो में हमारे साथ जरा देरी से जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं कि SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi, साथ ही हमारा जो इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है, वहां पर जाकर आप हमारे सभी अंश और कार्यक्रम फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि यदि आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और SBS हिंदी को फॉलो कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फिलहाल भारत में क्या कुछ चल रहा है।
2: स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश है भारत के समाचार। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सेक्रेटरी रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की नजदीकी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलेगी। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया। श्री रूबियो 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में सेक्रेटरी रूबियो ने भारत और अमेरिका के रिश्ते को दो बेहद सक्षम देशों के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन बताया।
3: Absolutely. One of the reasons why we're such strong strategic allies is because India is a place that's very advanced technologically. You have companies that are on the leading edge of technology in a variety of fields, and you happen to be our ally in terms of country to country. So it is an area of tremendous partnership. It speaks directly to the point that I made a moment ago, and that is you can have an alliance with countries. And we have, you know, we work with countries all over the world on a variety of issues. But there are only a handful of countries in the world where you can actually partner to influence global outcomes. And so India is one of those countries, which is the reason why our strategic alliance is so critical. It's a strategic alliance between two highly capable partners.
2: लेकिन श्री जयशंकर ने सतर्क रुख अपनाते हुए अमेरिका और भारत के संबंधों को रणनीतिक गठबंधन के बजाय रणनीतिक साझेदारी बताते हुए भारत का स्वतंत्र पक्ष रखने की कोशिश की।
4: The Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership. There could be some where they don't, in which case we have to manage those situations. Look, I want to say for our energy security, it's important we have multiple sources, large sources, dependable sources, cheap sources. The United States fits the bill in many respects. So do some other countries. So we will continue to diversify and maintain multiple sources of supply at the most reasonable cost, because at the end of the day we have an obligation to our people.
2: दिल्ली पहुंचने से पहले सेक्रेटरी रूबियो सपत्नीक शनिवार सुबह करीब 7 बजे कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी मुख्यालय और निर्मला शिशु भवन का दौरा किया। श्री रूबियो ने एक प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया, मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और बच्चों को टेडी बियर बांटे। इस दौरान उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की महासचिव सिस्टर कॉन्स्टेटिना और अन्य नन्स से भी बातचीत की और अपने दौरे को करुणा और सेवा के प्रति एक श्रद्धांजलि बताया।

उनके इस दौरे को भारत के वर्तमान घरेलू राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महीनों लंबे गतिरोध के बाद लद्दाख मसले के सुलझने की उम्मीद लग रही है। शुक्रवार को एबीएल यानी एपेक्स बॉडी लेह और केडीए यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे केंद्र के साथ लद्दाख में लोकतंत्र बहाल करने और संविधान के अनुच्छेद 371 ए, एफ और जी की तरह संवैधानिक सुरक्षा उपाय देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। एबीएल के प्रतिनिधि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एबीएल और केडीए के नेताओं के बीच लोकतंत्र बहाल करने पर एक व्यापक सहमति बनी, जिसके तहत एक विशेष रूप से तैयार विधायी निकाय होगा। इस निकाय के पास कार्यकारी, वित्तीय और कानून बनाने की शक्तियां होंगी और इसे संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। इस विधायी निकाय के चुने हुए नेता का मुख्य सचिव और बाकी नौकरशाही पर पूर्ण नियंत्रण होगा। समय आने पर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जब उसके पास वेतन, पेंशन आदि जैसे परिचालन खर्चों को उठाने के लिए अपना पर्याप्त राजस्व होगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार लद्दाख को राज्य या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बजाय एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था देने पर सहमत हो गई है, जिसके मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाएगा। आपको बता दें कि लद्दाख के आंदोलन को श्री वांगचुक के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। पिछले साल लेह में छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद श्री वांगचुक को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हिंसा के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 4 युवकों की मौत हो गई थी। श्री वांगचुक को 14 मार्च को जोधपुर जेल से रिहा किया गया था, जिसके बाद हालात बेहतर होने पर केंद्र सरकार ने इस बैठक का आयोजन किया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रविवार को दावा किया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का कंट्रोल उन्हें वापस मिल गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, तुम भूल गए कि कॉकरोच सबसे अच्छा क्या करते हैं, वे जिंदा रहते हैं। इंस्टाग्राम पर रविवार रात तक सीजेपी के 2,28,00,000 फॉलोअर्स हो चुके थे, जो किसी भी अन्य भारतीय राजनीतिक दल से कहीं ज्यादा हैं।

0: advertising.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: Pakistani kyo keh rahe hain? Aapko bata de ki Shri Rijiju ne X par bina kisi ka naam likhe ek post mein kaha tha ki kuch log social media par पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गिरोह से फॉलोअर्स जुटाते हैं, जबकि भारत में ही पर्याप्त युवा मौजूद हैं। उन्हें भारत विरोधी गिरोह से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। खुफिया एजेंसियों द्वारा सीजेपी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताए जाने के बाद सीजेपी के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया है, लेकिन इससे सरकार की दिक्कतें कम होने में नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसी नाम को अदल बदल कर कई और अकाउंट खुलते ही जा रहे हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर कई राज्यों और शहरों के नाम से भी सीजेपी की नई इकाइयां खुल रही हैं। सीजेपी द्वारा जारी की गई एक ऑनलाइन पिटीशन में नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है। अभी तक इस पिटीशन पर 10 लाख से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 11वां आरोपी गिरफ्तार किया है, जबकि पेपर लीक से दुखी एक और छात्र ने आत्महत्या की है। अब तक नीट के कुल 12 परीक्षार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। नई आरोपी मनीषा संजय हवलदार पुणे के सेठ हीरालाल सर्राफ प्रशाला कॉलेज में टीचर हैं। मनीषा नीट परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थीं। एनटीए ने उन्हें एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। अप्रैल 2026 में उन्होंने फिजिक्स से संबंधित कुछ सवाल एक अन्य आरोपी मनीषा मानधारे के साथ शेयर किए थे। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पार्टी की गतिविधियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में आरोप है कि संगठन सर्वोच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणियों का गलत इस्तेमाल कर उनका व्यावसायिक फायदा उठा रहा है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने 15 मई को एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कह दिया था। इसके विरोध में एक दिन बाद 16 मई को कांग्रेस जनता पार्टी बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि उन्हें 30 और 31 मई को होने वाली एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स का हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि ट्रायल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ के स्वतंत्र पर्यवेक्षक इसकी निगरानी करें। खंडपीठ ने फोगाट को एक बेहद आपत्तिजनक कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ की कड़ी आलोचना की और इस कदम को बदले की भावना से किया गया बताया। भारतीय कुश्ती महासंघ के नोटिस में कहा गया था कि ज्यादा वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक्स में उनका बाहर होना राष्ट्रीय शर्म की बात है। खंडपीठ ने केंद्र सरकार से भी यह सवाल किया कि फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के मामले में उसने भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
5: तो दोस्तों, ये आपने सुने आज के भारत से समाचार। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लौटकर बजट के बारे में बातचीत करेंगे एक खास मेहमान के साथ और जानेंगे कि जो इस बार का बजट आया है उसको लेकर क्या सोचना है लोगों का और किस तरह के जो चिंताएं हैं वो सामने आ रही हैं। बने रहें SBS हिंदी के साथ।
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
7: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some?

0: Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the cash phrase?
1: Sure. Take it for a spin.
0: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ. तो ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरर जिम चार्मर्स ने अपने 5वें फेडरल बजट में निवेश संपत्तियों और कुछ ट्रस्ट फंड्स और टैक्स बढ़ाने के साथ साथ श्रमिकों के लिए $250 की टैक्स राहत की घोषणा की है. अब सवाल यह है कि क्या ये कदम महंगाई और बढ़ते खर्चों से राहत देगा या महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है. बजट का रोजगार, बेरोजगारी और ब्याज दरों पर क्या असर पड़ सकता है. इन्हीं अहम सवालों पर इकोनॉमिस्ट नलिनी प्रसाद अपनी राय SBS हिंदी के साथ साझा करती हैं.

0: हाल ही में ट्रेजरर जिम चामर्स ने फेडरल बजट में नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स से जुड़े नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिन्हें वे पिछले 25 वर्षों का सबसे बड़ा कर सुधार बता रहे हैं। बजट दस्तावेज सैकड़ों पन्नों में फैला है और आंकड़ों से भरा हुआ है, लेकिन आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार की टैक्स कटौती और नई नीतियां उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डालेगी। तो इस साल फेडरल सरकार कुल 833.2 बिलियन डॉलर खर्च करने जा रही है, जो पिछले साल की तुलना में 47.5 बिलियन डॉलर अधिक है। इस खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी भुगतानों पर जाएगा। जो लोग निवेश करते हैं, निवेश की योजना बना रहे हैं या अपना पहला घर खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए ये बजट कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। लेकिन अर्थशास्त्री इन बदलावों को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या सरकार द्वारा दी गई टैक्स राहत और अन्य कटौती महंगाई को और बढ़ा सकती है? और अगर ये बजट रोजगार बढ़ाने में सफल होता है तो ये रिजर्व बैंक ब्याज दरों में और बढ़ोतरी कर सकता है या नहीं? इन सभी सवालों पर विस्तार से बात कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट नलिनी प्रसाद से, जो बताएंगी कि इस बजट के आर्थिक संकेत क्या हैं और आम लोगों को आने वाले महीनों में किस तरह के असर के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस बजट को लेकर टैक्स पेयर और इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं।
2: मेरा नाम नीरव है, नीरव कोटक, और मैं सिडनी से हूँ। एंड जो अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है, तो उसमें एज एन इंडिविजुअल और अगर मैं उसको बात करूँ एज एन इंडिविजुअल और एज अ बिजनेस ओनर, तो मेरे दोनों के साइड से अलग अलग सॉर्ट ऑफ व्यू पॉइंट्स हैं। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूँ तो हाँ, आई एम डेफिनेटली हैप्पी कि फ्यूल कट्स हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट कि जो अगर मुझे ट्रैवल कहीं पर करना है तो ट्रैवल में थोड़ा ईजी रहता है, डोमेस्टिक ट्रैवल में बेटर रहता है बिकॉज चीपर हो गया ट्रांसपोर्ट उस हिसाब से। बट अगर मैं इन जनरल बात करूँ कि जैसे मैं इन्वेस्टर भी हूँ, तो अगर मैंने कहीं पे प्रॉपर्टीज पास्ट में जो बाय की है और जो भी नया गाइडलाइंस अनाउंस किया है, उस हिसाब से क्या हुआ कि अगर मुझे जब

0: मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ तो आई बी पेइंग मोर. तो एज एन इन्वेस्टर वो चीज अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अदर देन आप जो नॉर्मल ट्रेडिशनली वर्क बिजनेस जॉब जो भी आप करते हो उसके अलावा, जैसे नॉर्मली लोगों के पास एक या दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो पास में जिसने बनाई है वो होती ही है. तो वो पर्टिकुलर मेजर था वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट समथिंग गुड फॉर द इन्वेस्टर साइड. अगर मैं दूसरी कोई बात करूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जो अच्छी अच्छी अगर हम लोग आउट ऑफ दिस बजट बात करें, तो लेट्स से एक जैसे हमने बताया फ्यू रिलीफ था, दूसरा था टैक्स डिडक्शन जो $1,000 का था अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करता है या उनके लिए. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ. एंड तो कपल ऑफ चीजें जो थी वो काफी अच्छी थी, बट मोर ओवर अगर आप उसको इन्वेस्टर या एज अ बिजनेस ओनर अगर आप देखते हैं तो इतनी अच्छी नहीं दिखने में लग रही है अभी के हिसाब से.
1: तो आइए जुड़ते हैं नलिनी प्रसाद से. आपको बता दूं कि ये साक्षात्कार अंग्रेजी में रिकॉर्ड किया गया है. वेलकम टू SBS हिंदी प्रोग्राम नलिनी. नलिनी, कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ दिस बजट एंड व्हाट स्टूड आउट टू यू मोस्ट एज एन इकोनॉमिस्ट?
2: So I guess the most surprising element of this budget has been there's just been so many things in it. The government's making changes to taxes for property investors. They're giving workers some of their taxes back to help cost of living. And there's just so many things to unpack, I guess, has been the most surprising thing in the budget. So the key element of the budget is that essentially the government is giving some taxes back to voters. So in terms of cost of living, the government's giving you back taxes in three forms. It's got a $250 tax offset, which most workers will start getting from the next financial year. The government's also allowing you to have an instant tax deduction of $1,000. So you'll be able to claim a $1,000 tax deduction in your next tax return without having to provide any receipts. And the government is also going to reduce the tax rate at the first income bracket in which you pay taxes. So currently the rate is 16%. It's going to be reduced to 15% for the next financial year and 14% from the financial year after that. So if you take all these things together, once all these effects come into play, this will give the average

तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आई थी नताशा कॉल, जहां हमने बातचीत की इकोनॉमिस्ट से और जाना कि वो बजट को लेके इस बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें 04397997667 पर जरूर भेजें और बताएं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। तब तक आपको सुनाती हूँ एक बढ़िया सा गाना।

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: Life's easier when things are convenient. That's why we developed Cameron Grove Estate, a relaxed family-oriented community just 30 minutes from Newcastle. Imagine brand new facilities to make life easy right on your doorstep. Groceries, delicious dining, cute cafes, boutique shops, parks and playgrounds, even a library, all a short stroll from the front door. And with the highway only a short drive away, the workday commute is a breeze. Create a life of blissful convenience. Book a private inspection today. Visit camerongroveestate.com.au.
2: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
3: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
4: Mom, please.
3: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
4: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
3: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
4: Wow, you weren't kidding, Mom.
3: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
3: No, the other one.
4: What's in your wallet?
3: Oh, that's my boy.
5: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो ब्रेक से पहले हमने आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना सुनाया, और मुझे जरूर बताएं 04397997667 पर कि आज का जो ये कार्यक्रम है आपको कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दुख और मुश्किल वक्त में अक्सर लोगों को करीब ले आते हैं सोशल मीडिया पर जो बातचीत होती है वो, लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया ये जो जुड़ाव है इसको मजबूत करता है या लोगों के बीच ये जो दूरियां हैं उसे बढ़ा रहा है। आइए इसी पर चर्चा करते हैं SBS एग्जामिन्स के इस खास अंश में।
7: दुख एक ऐसा एहसास है जो बहुत ही जटिल होता है। ये अलग अलग लोगों और अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल और सोशल मीडिया, इन चीजों ने इसे और भी मुश्किल बना दिया है। SBS एग्जामिन्स ने बोंडाई में लोगों से दुख के बारे में बात की और ये भी जानना चाहा कि क्या सोशल मीडिया उनकी मदद करता है या इसे और खराब कर देता है। दिसंबर 2025 में सोनिया बोंडाई हनुका बाई द सी इवेंट में शामिल होने के लिए आई थी। उस आतंकवादी हमले से कुछ मिनट पहले ही वहाँ से चली गई। वो कहती हैं,
8: If you open your phone and start reading and it doesn't help anyone if I as a person start to ruminate about what's happening.
7: मार्कस बोंडाई के रहने वाले हैं। उनका कहना है,
9: I think initially

तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले ब्रजेश जी का संदेश आया है, लिखते हैं कि अभी कई हफ्तों बाद आपके साथ जुड़े हैं, बता रहे हैं आज का जो बजट पे हमारी रिपोर्ट थी इन्हें बहुत अच्छी लगी है और आज के गाने भी, और पूरी SBS हिंदी टीम को विश कर रहे हैं। तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा एक और संदेश हमें आया है सिडनी से, जो कि लिखते हैं सलाम नमस्ते, अकबर मजारी और डैनियल मजारी की ओर से ये संदेश हमें आया है। तो आपके संदेश के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।